विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिति परंतकारी

सुखं सुखं शंसनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कलाशो नित्यं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलग्रहा।

90 ओम 24 इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी धादिंग ओम 24 इंटरप्राइजेस तपाईकै सेवामा सधैं तत्पर।